भगवान का घर है, हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्सूम। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों, आज शुक्रवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट की जरिए हमारा प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी आप सुन सकते हैं और हर एक इंटरनेट रेडियो की जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन, यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है और आप सभी सुनने वालों को मालूम है भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरी हरन की आवाज में सुबह सुबह लो सीऊ का नाम। पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों सभी भक्त ब्रांड।

रेडियो SBS की सर ये सुंदर भजन हरि हरन के आवास में पेश की गए सुबह सुबह लो सियु का नाम। अभी आपने सुना सुंदर सा भजन जो हर सुबह आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों, आज शुक्रवार का दिन है, माता जी का दिन है। आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम में अगला भजन जो पेश होगा नरेंद्र चंचल की आवाज में एक सुंदर सा माता जी का भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

SBS की जरिए सुंदर भजन उस प्रोग्राम में नरेंद्र चंचल की आवाज में, नरेंद्र चंचल की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। अगला भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है शुक्रवार का दिन है, माता जी का दिन है, तो चले ये सुंदर भजन बस प्रोग्राम में मिलकर सुनते हैं।

दर्शा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चलिए रेडियो SBS का भजन यात्रा प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन की ओर।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है सुंदर भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं सुंदर भजन जो सोनू निगम की आवाज में पेश किया जा रहा है। हमारे सभी सुनने वालों जो स्टूडियो की ओर तार किया है आप सभी के तार के लिए लाख लाख धन्यवाद। सभी को शुभ सुबह शुभ दिन भी पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से।

निगम की आवाज में सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में श्री महालक्ष्मी चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस के जरिए।

विवेक की आवाज में सुंदर सा श्री महालक्ष्मी चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पीछ की गए है। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में श्री महालक्ष्मी आरती बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और आरती भजन पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कहीं प्यार ना हो जाए फिल्म का नाम, कमल खान, कुमार सानू, अलका, नितिन मुकेश और साथियों की आवाज में। और गाना का बोल है ओ प्रिया नाम। कहीं प्यार ना हो जाए फिल्म का नाम, कमल खान, कुमार सानू, अलका, नितिन मुकेश और साथियों की आवाज में। और गाना का बोल है ओ प्रिया

जुबिन एन नीति मोहन की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया गया। आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए 2-32-66-66-11 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है। कहो ना प्यार है उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग प्रोग्राम में उदित नारायण और अलका जी की आवाज में।

फिल्म का टाइटल सॉन्ग बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और चले अब की बार कुमार सानू एनाल का जी की ओर, किसी से तुम प्यार करो कहीं देर ना हो जाए। कुमार सानू एनाल का हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम अंदाज, एक फिल्म जो 2003 में रिलीज

अंदाज फिल्म का नाम कुमार सानू एन अलका की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl से वेबसाइट के जरिए भी अपना मोबाइल फोन के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। चलिए एक बार फिर से कुमार सानू और अलका की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो अभी बार पेश होगा एक बड़ी ही खूबसूरत प्यार भरी गाना है।

कुमार सानू और अलका की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आपकी फरमाइश हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर जो 24 घंटे होता है उस पर आप तार कीजिए और सभी इंफॉर्मेशन लीजिए 0302-65-65-60 पर या तो ईमेल कीजिए रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए। उदित नारायण और अनुराधा पोटवल, फिल्म का नाम कुछ दिल ने कहा, कुछ दिल ने कहा फिल्म का नाम।

आभास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। कुछ दिल ने कहा फिल्म का नाम, एक फिल्म जो 2002 में रिलीज किया गया है, और आप सभी सुनने वालों की सेवा में उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल की आवाज में ये गाना पेश की गई है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे, फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है। एक बार फिर से उदित नारायण और साथ में

आवाज में गाना उस प्रोग्राम के बीच की गए। फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है, उसी फिल्म का गीत उस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में खूबसूरत नख में प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। चले शान और संजीवानी की आवाज में ये गाना।

dan ben je door minuut bij dit Hojuka Hem. 2:09 studio tijd Hojuka Hem. Radio SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आज भी काफी गर्मी सा मौसम होने वाले हैं।

एक खूबसूरत और सुहाना दिन बस पेश किया जा रहा है। यहाँ से पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुबह की वक्त है तो आप सभी सुनने वालों को गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ बस स्वागत किया जा रहा है। तो चलिए प्रोग्राम में पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में। आज उड़ता हुआ एक पंछी मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

बहार। श्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में प्रसून मुखर्जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

प्रसून मुखर्जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म 20 साल बाद उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत पेश की गए, खासतौर पर 1950 का फिल्म का गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम निराला, उसी फिल्म से अभी आपने ये खूबसूरत गाना सुना लता जी की आवाज में। चले किशोर कुमार की ओर और अब की बार श्री रामचंद्र का संगीत पर ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: अगर ये कहूँगा
1: क्या
0: यही है यही है यही तो है वो
2: इना मीना डिका
3: इना मीना डिका
2: ऐडा ऐडा मनिका
3: ऐडा ऐडा मनिका
2: अमाका नाका नाका
3: अमाका नाका नाका अच्छी कपिकारी का
4: किशोर कुमार की आवाज में श्री रामचंद्र का संगीत पर ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। किशोर कुमार के बाद चलेगा आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। लता मंगेशकर की आवाज में

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जाए।

उन्नीस सौ इकसठ का फिल्म, फिल्म का नाम घराना। उसी फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 032-62-66-11। इसी तार की नंबर पर, टेलीफोन नंबर पर स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। चले किशोर एन लता मंगेशकर की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

किशोर कुमार और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। उसी सुनने वालों, बस रोजाना मोबाइल फोन टैबलेट के जरिए बस प्रोग्राम को सुनते हैं। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं एक बार फिर से किशोर कुमार की ओर, साथ में होगा आपकी बार आशा भोसले और फिल्म का नाम जाग उठा इंसान। किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में ये गाना भी

किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम जाग उठा इंसान। चले प्रोग्राम में महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

जिखी आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। महेंद्र कपूर और लता के बाद हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी और आशा जी की ओर, और गाना का बोल है सांसों में कभी। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा

सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार फिल्म दारिंदा, उसी फिल्म का गीत प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में।

इस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था दारिंदा। दारिंदा फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। चलिए अब की बार मोहम्मद रफी और लता जी की ओर।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गए। चोर मचाए शोर फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गाना उस प्रोग्राम में पेश की गए। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में मुकेश एम कंचन आपको ले चलते हैं फिल्म धर्मात्मा की ओर। मुकेश और कंचन की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

याद दिलाया है, और वो है उत्तरा शहर की ये रहने वाली माला बाबूलाल। और हमने वादा किया है कि आज के प्रोग्राम में पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में गाना जरूर हम पेश करेंगे। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में बस शामिल है मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम आप तो ऐसे ना थे, उसी फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में 1980 का फिल्म है, फिल्म का नाम आप तो ऐसे ना थे।

ऐसे दाते उसी फिल्म का गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई मोहम्मद रफी की आवाज में 1980 का फिल्म का गीत अभी आपने सुना। तो इस तरह से मेरे जिंदगी में बस शामिल है। 10:00 प्रोग्राम में 12 मिनट व्यतीत हो चुका है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर आप सुनते ही रहना।

पीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार मरहूम मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है

0: तुम्हारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना।
1: किशोर कुमार के आवाज में खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था कटी पतंग। चले अब की बार फिर से किशोर कुमार होगा, लेकिन किशोर कुमार के साथ लता जी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है।
0: पूरा मत मानना जरी, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर ये भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
2: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: लेकिन जरी, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
2: तुम मुझे प्यार करते हो।
0: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद अब पढ़ भी नहीं पाऊंगा। पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
2: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: प्यार तो करता हूँ जरी,

कुमार एन लता मंगेशकर की आवाज में खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। किशोर कुमार की आवाज में अब की बार फिल्म नजराना का गीत पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार की आवाज में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था नजराना, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। शहरी उत्तराखंड से रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

प्रभा की आवाज में। तो फिल्म परवाना, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले आपके बाहर फिल्म खेल की ओर हम आपको ले चलते हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में।

रेडियो SBS की जरिए कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। एक बार फिर से कुमार सानू जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम को भी आप सुन सकते हैं। उदित नारायण

सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब कई बार अतीफ असलम की आवाज में एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

अतीफ असलम की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई एक गाना बस प्रोग्राम में

खुशी फिल्म का गीत उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कुमार सानू और महालक्ष्मी आयर की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

महालक्ष्मी आयर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। फिल्म का नाम कयामत, एक फिल्म जो 2003 में बस

एडवांस में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से अलका जी की आवाज में खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है, साथ में होगा

में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा। उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गए अतीफ असलम और सुमेधा प्रोग्राम में।

खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। लाइव के जरिए प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अलका जी के आवाज में आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

सोनू निगम और खासतौर श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा, उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। तो चले अब की बार आपकी सेवा में ये गाना पेश किया जा रहा है, अक्रूस फिल्म का नाम।

और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों चलिए आज की इस प्रोग्राम में गाना एडो फिल्म आंखों में तुम हो कुमार सानू और अलका जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

जनाब उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं के आवाज में। आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

अखबार की आवाज में गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। फिल्म दौलत, उसी फिल्म का गीत आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हम आपको ले चलेंगे आज की प्रोग्राम में हमरास फिल्म का गीत की ओर, सॉन्ग बाय महेंद्र कपूर और गाना का बोल है तुम अगर साथ देने का वादा करो। रेडियो वेस में इस पर आपने चून किया है संगीत भरी स्टेशन का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

कपूर की आवाज में फिल्म हमराज का गीत अभी आपने सुना, जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी आप हमारा प्रोग्राम को सुन सकते हैं। बहुत सी सुनने वालों, बस मोबाइल फोन के जरिए, मोबाइल टेलीफोन के जरिए हमारा ये प्रोग्राम भी सुनते हैं। और उसी वेबसाइट पर तरह तरह की खबरें, न्यूज, मौसमी समाचार और आपका दाख हॉरोस्कोप यानी कि ज्योतिष शास्त्र भी होता है। बहुत सी सुनने वालों होते हैं जो जाकर अपना दाख हॉरोस्कोप को भी देख रहे हैं अपना ज्योतिष शास्त्र रेडियो SBS का वेबसाइट पर। रोजाना आपका दाख हॉरोस्कोप इसी वेबसाइट पर होता है radio.sbs.nl। जरूर अपना मोबाइल फोन पर आप जाइए इसी वेबसाइट पर। गाना जो अगली बार प्रोग्राम में पेश किया जाएगी, हम आपको ले चलते हैं खास तौर पर द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की ओर। मुकेश जी की आवाज में एक गाना बस प्रोग्राम में आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में मरहूम मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं। अबकी बार

की आवाज में ये गाना बस पेश की गई है। लागी तुमसे लगन साथी झूठे ना, काफी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। लता मंगेशकर एक बार फिर से प्रोग्राम में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में लता मंगेशकर की आवाज में खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना। आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में चले गाना किशोर कुमार की आवाज में आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है

नहीं की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई एक पाकिस्तानी मूवी का गीत, एक पाकिस्तानी फिल्म का गीत उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। नहीं के बाद हम आपको ले चलेंगे द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद और गीता दत्त की आवाज में गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और गाना का बोल है तुमसा मीत मिला।

ईद मिला रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। चलिए अपनी बार द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की ओर हम आपको ले चलते हैं और माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुनो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशुलि क्रमराल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आरजे अंशुलि क्रमराल, die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren, kan het altijd, surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 030-262-6611. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag en dat is...

थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया। इस किस्म तो श्रेया घोषाल एंड फरहान सईद देख लीजिए क्वाम ऑफ द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड। खामदा फेदर में कितनी बातें याद आती है द फिल्म लक्ष्य।

मैं समझा ना मैं जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: फिल्म सुल्तान से आपने सुना प्रोग्राम गीतों के लहर में विशाल ददलानी और बादशाह की आवाज में बेबी को बेस पसंद है। और अब आप सुनिए अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज में फिल्म रईस से जालिमा।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

फिल्म बद्री की दुल्हनिया से आपने सुना तम्मा तम्मा अगेन, और अब आप सुनिए ढाकर फिल्म दंगल से रफ्तार और प्रीतम की आवाज में।

0: मैंने कोई जादू नहीं किया, तू ही मेरे पीछे आया पिया आवाज आवाज फिल्म मुझे कुछ कहना है। दिल्ली तेज खजोंदोर कुमार सानू एंड प्रीति आवाज फिल्म यादें कम तो फोन लीजिए फिर रेडियो SBS। जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले।
1: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले। मिले मिले मिले मिले दिल मिले,

थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। बेहतरीन गाना आपने सुना अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म मैंने दिल तुझको दिया है से। तो अब आप सुनिए फिल्म शुभ मंगल सावधान से अरिजीत सिंह की आवाज़ में राख।

हो बस यही काफी है, हर एक मौसम भी अपना लगे। तेरे इश्क में ये दिल कहे अब और कुछ भी ना चाहिए।

कितना प्यार करते हैं तुमको सनम, मेरे दिल से पूछो ना। आपने सुना फिल्म बनारस से हिमेश रेशमिया की आवाज में। और अब आप सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में अगला गाना प्रोग्राम रेडियो SBS का। फिल्म धूम 2 से आप सुनिए क्रेजी क्यारे।

मुझे साजन के घर जाना है, इसका सॉन्ग दूर अलका याचनिक, सोनू निगम एंड जसपिंदर ने रूला एंक वाम आयो द फिल्म लज्जा. Het volgende liedje in het programma Gieton Kleher via Radio SBS is gezongen door Sunidhi Chauhan en KK. Uit de film Basik Pal komt Ashk Bhi Muskuraye.

क्वा मैं तो फिल्म वीर ज़ारा तुम पास आ रहे हो, गाँव दो जगजीत सिंह एंड लता मंगेशकर हेफ्ती दी गहोर्ड इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। गाँव द फैदर मैथ हरी हरन एंड कविता कृष्णमूर्ति मैथ आई द फिल्म गुलाम मुस्तफ़ा। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आज अलग जा गले दिल जानी।

वो बारिश की बूंदे इज आउट द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड, अ फिल्म फन श्रद्धा कपूर एंड अर्जुन कपूर, एंड आउट द फिल्म प्यार तो होना ही था कॉम्ड गुसंग दौर आशा भोसले एंड विनोद राठौर, प्यार तो होना ही था द टाइटल सॉन्ग।

न्यू अफेयर सिफान और इस दिल में क्या रखा है, इस द फिल्म क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है, एन आर द फिल्म यादें कौमत सोंग दोर सोनू निगम एंड अलका याचनिक, चम चम चम चम चम चमकती शाम है।

कौन मैं? हाँ तुम, बस तुम। ओफो, वास आउट द फिल्म अजनबी एंड आउट द फिल्म 14 फेरे कंठ सहंदो रेखा भारद्वाज राम सीता संग द्वारे।

मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए, कभी छेड़े, कभी बात करे, राधा कैसे न जेले बस अर्ध फिल्म लगान। एंड अर्ध फिल्म प्यार तूने क्या किया कॉम्ट गजोंग दोर सोनू निगम एंड अलका याचनिक द टाइटल सॉन्ग।

सुना है तेरे दिल पे मेरे, कहीं ना कहीं नाम लिखा है इसका सॉन्ग दो श्रेया घोषाल एक बार आउट द फिल्म सनक, आउट द फिल्म टाइगर जिंदा है कम दाग सॉन्ग दो आतिफ असलम दिल दिया गल्ला।

0: संगीत भरी स्टेशन ये है रेडियो SBS. रेडियो SBS. रेडियो SBS.
1: जब रेत में बोतर नहीं तो खाने में क्या मजा, जब गांव में छौरी नहीं अरे तो भैया जीने में क्या मजा।

0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम